मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ का जो भी नॉर्म हमने तय किया है उस सब नॉर्म्स को वो एक्सीड कर गया है, लास्ट लिमिट पे है, और उसी वक्त सिम्टम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उससे पहले सिम्टम नहीं पैदा होते, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, अगर 98 रहा तो टेम्परेचर तो है ही ना, लेकिन उबला नहीं है, उबलने वाला जो वो आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, आप उससे ही नहीं मार सकते उसको। इसी तरह ही आपका शरीर चलन में चल रहा है, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो पूरा जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लेकिन एक ऐसा स्टेप आता है कि एकदम नींद डिस्टर्ब हो गई, एकदम खाना भूख मर गई, या कुछ उसमें इंडाइजेशन पर हजमी हो गई, इस तरह एकदम आपको आज मन करता है कि नहीं मैं तो काम ही नहीं कर सकता, मैं तो चल ही नहीं, मतलब कोई भी चीज अगर एकदम किसी कारण से हो गई है तो फिर आपको 72 घंटे का सर्वे आपको कर लेना चाहिए। इस 72 घंटों में आपने क्या ऐसा किया जो पहले नहीं करते थे, क्या ऐसा खाया जो आम रूटीन अमूमन में आप नहीं खाते थे, किस तरह का बिहेवियर, कौन सी ऐसी चीज हुई कि आज उसके साथ लड़ाई होगी, गर्मा गर्मी होगी थी, अब वो आपके मन पर सवार है, वो बातें आपके मन पर सवार हैं और आप शांत नहीं है उसके लिए, और उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर हो नहीं रही अंदर से, अल्टीमेटली वो आपके शरीर में ऐसा ही नहीं है कि मानसिक तौर पे उसको डिस्टर्ब करेगी, शारीरिक तौर पे भी उसमें निशानियां आएंगी। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि जो चीज अभी पैदा हुई है उसके पीछे के 72 आवर्स को अगर आप सर्वे कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे नॉर्मल रूटीन का हिस्सा नहीं थी, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी और वो हुई है, तो आप क्या करें इमीडिएटली इस चीज के रिलीफ के लिए, आप उसको वो नोटों की गत्थी जो थी ना जिसमें अभी और नोट नहीं डाले जा सकते, अगर डालते तो रबड़ फट जाती, वो बंडल ही नहीं रहता, तो उसमें से आप थोड़े से बंडल निकालो, थोड़े से नोट निकालो, जो रबड़ है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, बॉडी के फंक्शन जो थे जिसको हम मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ कह रहे थे उसके नॉर्म के हिसाब से आप मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे थे, जिसलिए कोई बीमारी हुई, मैक्सिमम आपका सोने का ढंग बदल गया, मैक्सिमम आपका काम करने का ढंग बदल गया, मैक्सिमम आपका खाने का जो है वो चेंज हो गया, और वो जो चेंज हो गई है उसको कुछ हद तक आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट कर रही है, वो उसका काउंटर एक्ट कर रही है, लेकिन जिस वक्त आप नहीं कर पाएंगे सिम्टम पैदा हो जाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दी कि आप लोग बोलते हो यार जब मैं दही खा लू ना तो मेरा गला खराब हो जाता है, या मैं अचार खा लू ना तो मुझे खांसी होनी शुरू हो जाती है। ये अचानक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे जो बिल्टअप बन रहा था ना वो ये था कि आपका टेम्परेचर 97-98 में पहुंचा हुआ था, और दो बाकी बचते थे ना आपके अचार खाने से या आपके दही खाने से या आपके इस तरह की कोई चीज खाने से अगर हो रहा है, इमीडिएट आपको लगा कि यार गला खराब हो गया है या खांसी आनी शुरू होगी, ओ यार आज मैंने दही खा लिया था, आप दही को ब्लेम कर रहे हैं, पर उस दही को ब्लेम करने का मतलब ये है कि उसको अगर आप उसी वक्त विदड्रॉ कर ले कि अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बॉडी हमारी जो है ना सेल्फ रेजिस्टेंट वाली बॉडी है, ये अपने आप अपने आपको तंदुरुस्त करने की कैफियत रखती है और करती रहती है, हमेशा करती रहती है, हजारों तरह के जरासीम जो है हमारे आबो हवा में होते हैं, सभी बीमारियां हमें नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी उनका काउंट्रैक्ट करती है अलग अलग जगह से, ऐसा होता रहता है, लेकिन एक ब्रिटअप बनता रहता है बॉडी के अंदर, एक कॉन्सेंट्रेशन बनती रहती है किसी चीज की, और वो एक लेवल पे आके आप चल रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन उसमें वो दो वाला जो ऐड करना है ना 2 सेंटीग्रेड का, जब भी वो ऐड हो जाएगा तो आपको लगेगा कि भाई इसी बात से ऐसा हुआ है। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि एक नोटों के बंडल से कुछ नोट निकाल दें तो आप उसी वक्त आप रिलीफ महसूस करेंगे, एक बात, लेकिन ये मत सोचें कि इसको यहीं छोड़ दें, तो ठीक है कोई बात नहीं, गला डॉक्टर ने बोला था गरारे कर लो, गले का गला साफ हो जाएगा, या थोड़ी ग्लिसरीन लगा लो ठीक हो जाएगा, ये सब चीजें, और ठीक है
एक या दो दिन में आप नहीं भी कुछ करेंगे तो वो टेम्परेरी चीजें ठीक हो जाएंगी, कि तब तक हमारी जीवन शक्ति जो है वो आप उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है, जो अपनी प्रोटेक्टिव पावर है, उससे उसको वो ठीक कर लेगी। इसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं कि कैसे कोई चीज होती है, कैसे WBC वहां आते हैं, कैसे ब्लड का फ्लो वहां पर ज्यादा आता है, कैसे उन सब चीजों को ठीक कर लेता है। जैसे गड़बड़ हुई तो पुलिस भेज देते हैं, पुलिस ज्यादा आ गई, उसने सब चीज को कंट्रोल कर लिया, एक बार कंट्रोल हो गया और फिर अपनी अपनी जगह वो पुलिस वाले सभी चले जाएंगे। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो WBC है, ब्लड का फ्लो किसी भी बीमारी के हालात में, किसी भी बीमारी के एरिया में ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब यही है कि वहां पर जो गड़बड़ हुई है उसको एकदम ठीक करना, उसके लिए एक लिमिटेड समय है, वो भी यही 72 आवर्स। हम लोग समझते हैं कि विद इन दिस पीरियड, ये स्पेसिफाइड पीरियड है जो बार बार एक्सपेरिमेंट करते करते हमारे सामने आया, इसीलिए मैं 72 घंटे कह रहा हूँ। किसी को ज्यादा भी लगता होगा, कोई जल्दी भी ठीक हो जाता होगा, लेकिन एज एन एवरेज जो काउंट किया गया है वो यही है कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर गला खराब हुआ है, अगर आपने उसके बाद गला अचार नहीं खाया, उसके बाद आपने दही नहीं खाया, वो ठीक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने नोटों की गति से वो कुछ नोट निकाल दिए हैं जिसकी वजह से ऐसा कंडीशन पैदा हुई थी और अब वो नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, हम लोग यहाँ तक ही लिमिटेड हैं कि भाई हुआ था 2 दिन के बाद वो ठीक हो गया था, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये जो लेक्चर है आपको ये बताने के लिए है कि नहीं भाई, जब भी आपको लगे कि हम रूटीन में जीवन जी रहे हैं, कुछ ऐसा खा लिया, 72 आवर के अंदर अंदर आप सर्वे करें कौन सी ऐसी चीज आपने खाई जो आप रूटीन में नहीं खाते थे, कौन सा ऐसा एनवायरमेंटल चेंज आपके बिहेवियर में हुई है, रहने सहने के ढंग में हुई है, नींद के चलन में हुई है, अब उसको दुरुस्त कैसे करना है कर लीजिए। लेकिन ये क्या होगा कि ये वो होगा कि जो पानी उबलने वाला था ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो ठीक हो जाएगा, अब उबलेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये क्योर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेसिवेशन, जो इमीडिएट एग्रावेशन, जो इमीडिएट बीमारी बढ़ गई थी, इमीडिएट एकदम 96 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, वो आपका रुक गया। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी बीमारी को छोड़ देंगे तो वो बार बार होती रहेगी, बार बार होती रहेगी, और अल्टीमेट ऐसा होएगा कि उसके बार बार होने के बाद रेजिस्टेंस इतनी वीक हो जाएगी कि आप अगर पहले इस तरह के हालात को 2 दिन में कवर करते थे तो हम 2 दिन में कवर नहीं होगा, इसके हालात को अगर आप 4 दिन में कवर करते थे तो 4 दिन में कवर नहीं होगा। रेजिस्टेंस वीक होती जाएगी, उम्र को भी बढ़ना ही बढ़ना है, और अल्टीमेट ऐसे ही बोलते हैं ना कि बीमारियां ज्यादातर बुढ़ापे में होती हैं। क्यों होती हैं कि हमारी रेजिस्टेंस, हमारी पावर जो वाइटल पावर है नौजवानी में बहुत ज्यादा तेज होती है, मेटाबॉलिक रेट में एनाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए हम कम बीमारी में सफर करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ही ये एनाबॉलिक रेट कम होना शुरू होता है, कैटाबॉलिक रेट ज्यादा होना शुरू हो जाता है, बीमारियां ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। बल्कि वो जो अंदर की कंडीशन जिसको हमने 98 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आपको एग्जांपल दी है, इस तरह की जो चीजें जो बार बार आप करते थे और वो ठीक हो जाती थी, अब वो बार बार आप करेंगे तो वो ठीक नहीं होंगी। बेशक आपने ये कहा कि अब मेरे को तो दमे की बीमारी थी, खांसी थी, जब मैं दही खा ये हवा में जाता था या जब मैं दही खाता था या चार खाता था वो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, या कुछ ऐसा खाता था जिसकी वजह से मेरी बीमारी, कोई भी बीमारी थी, वो बढ़ जाती थी, और आप उसको उस तरह कंट्रोल करते आए हैं जैसे मैंने बताया कि आपने विदड्रॉ कर दिया, नोट निकाल दिए गलती से, ये करते आए हैं, लेकिन आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब क्या, ये नहीं है कि वो कारण हटा दी तो बात खत्म होगी, कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो कारण फिर वाबस्ता हो जाए आपके साथ, फिर क्या होगा। तो मतलब क्या है कि हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उसको हालात के मुताबिक इस काबिल बनना होगा, जिसको हम रेजिस्टेंस डेवलप करना कहते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करना कहते हैं, कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि अगर जितनी सर्दी लगने से पहले मुझे बीमारी हो जाती थी अब नहीं होगी। जितना नाइट वॉचिंग के लिए
या हम रात को काम करते थे तो उससे हमारा हम बीमार रहते थे, शरीर ठीक नहीं रहता था, या जिस एसी में हम लगातार काम करते थे तो बीमार रहते थे, ये हमें पता हो गया कि ठीक है अब आप एसी में काम नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेट कुछ समय ऐसा आ सकता है कि आपको फिर करना पड़ जाए, तो इसका मतलब आप फिर बीमार होंगे। अब जब नौजवानी में बीमार हो गए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बुढ़ापे में बीमार हो गए तो फिर लटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिर्फ नोटों को निकालने के बाद गठी को रिलैक्स करने तक का काम किया है, उसके पीछे ये जो उबलने वाली बात थी इसको आपने कंट्रोल नहीं किया। और इसी तरह की ही जो बीमारी है जिसको हम सार्कोइडोसिस बोलते हैं, जिसके बारे में हमने आप सब लोगों को कल बताया था, कल का पंजाबी का प्रोग्राम था, उससे पहले अंग्रेजी का प्रोग्राम था, उसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था कि भाई इस तरह की एक बीमारी है जो ना तो बहुत ज्यादा सीरियस लगती है, कभी कभी हो जाती है, और कभी कभी होने के बाद कभी कभी ठीक भी हो जाती है, अपने आप भी ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद, और अल्टीमेट ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाना उसका परमानेंट हो जाता है, नहीं, बार बार वो आती रहती है, बार बार ऐसा होता रहता है, और जितनी बार भी वो आती है अल्टीमेट वो जैसे वो है ना कि किंग ब्रू एंड द स्पाइडर, उसकी कहानी आप सब लोगों ने शायद पढ़ी होगी, जितने लोगों ने पहले किसी के लेक्चर पढ़े हैं, तो बार बार करते करते अल्टीमेट कोई बंदा किसी भी काम में सक्सीड हो जाता है। तो अल्टीमेट कोई भी साधन जो है जो हमारी वाइटलिटी को वीक कर रहे हैं, अगर वो लगातार बबस्ता रहेंगे तो अल्टीमेट वाइटलिटी वीक होती जाएगी। करना क्या है, हमें अपना एनाबॉलिक रेट हाई रखना होगा, हमें बेशक बुढ़ापा आ रहा है, एनाबॉलिक रेट नेचुरली कम होना शुरू हो रहा है, बावजूद इससे भी अगर आप टेक केयर करते हैं उस बात की, एनाबॉलिक रेट को मेंटेन कर पाते हैं, तो फिर बीमारी वो आपको नहीं होगी। तो सार्कोइडोसिस किस तरह की बीमारी है कि जिसमें शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे दाने जिनको हम ग्रेनुलेशन बोलते हैं ना, ये ग्रेनुलेशन किसी भी जगह हो सकते हैं, और किसी भी जगह होने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ हुई अब उसके बाद ठीक हो जाए, लेकिन बार बार होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद होते हैं, एक तरह ग्रुप में निकलने वाले छोटे छोटे दाने हैं वो ग्रुप में ऐसे आने शुरू हो जाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं सार्कोइडोसिस बोलते हैं। और ये इस तरह की हकीकत है कि शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, बाकी जगह तो हो जाए तो कोई बात नहीं, टांग में होगी, कुछ में होगी। यार आप लोग देखते हैं कि मेरे डॉक्टर साहब ये टांग में ना बार बार छोटी छोटी फिंसियां सी हो जाती हैं, और फिर मैं सोरा तेल तू लगा लेता हूँ तो ठीक हो जाती, कुछ थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती, फिर दोबारा कहीं हो जाती है। तो बार बार इस तरह होने वाले ग्रुप, एक तरह झुंड जिसको हम बोलते हैं, एक झुंड के तौर पर छोटे छोटे दानों का उभर आना, अलग अलग अंगों में उभर आना, और उसके पीछे कोई हमें ये पता ना चले कि भाई असल हकीकत क्या है, इस तरह की बीमारी जिसके पीछे कोई इमीडिएट एक्साइटिंग फैक्टर दिखाई नहीं देता कि भाई जैसे मैंने आप दही खाने की बात या अचार खाने की बात कही है, इसको हम इमीडिएट एक्साइटिंग फैक्टर हम बोलते हैं। इमीडिएट एक्साइटिंग फैक्टर कोई नहीं है, पर ऐसा होता है चलते चलते निजाम में कि कभी हो गई फिर ठीक हो गई, तो हो गई फिर ठीक होगी, और आप केयर फ्री हैं इस बात के लिए। लेकिन आप वो वही बात मैंने जो किंग ब्रूस वाली एंड द स्पाइडर की बात बताई, ठीक उसी तरह ही अल्टीमेट जितनी बार भी ये स्ट्रोक हुआ उतनी बार ही आपकी वाइटलिटी वीक हुई। और अगर आप नोटिस करेंगे ना, कोई भी बीमारी एक बार आपको होती है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है, चाहे आपके उपराले से, चाहे वाइटलिटी के अपने सिस्टम के मुताबिक ठीक हो जाती है, और फिर जब दोबारा होती है तो मान लिया जाए पहली दफा हुई थी दो या तीन दिन रही थी, दूसरी दफा दो या तीन बार रह जाएगी, ज्यादा लंबा समय रहेगी। पहली दफा जो आपको तकलीफें थी उससे ज्यादा तकलीफें होगी, हो सकता पहली दफा आपने महसूस ही नहीं किया हो, भी कुछ है कि नहीं है, परवाह ही नहीं किया हो, लेकिन जब दूसरी बार हो जाएंगी तो फिर आपको लगेगा कि नहीं कुछ परवाह तो करनी पड़ेगी, कुछ तो है, क्योंकि उनको हम लोग उसके बोलते हैं जनरल सिम्टम। तो जनरल सिम्टम में मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, फटीग, थकावट,
अब काम करते हो, एग्जर्ट तो करते हो, तो अल्टीमेट थक तो सभी जाते हैं, थकने की लिमिट है ना, कि कोई बात नहीं, किसी ने 2 घंटे आराम कर लिया तो फिर उसके बाद तरोताजा हो गए, फिर काम कर लो, उसके बाद फिर रेस्ट कर ली और इसी तरह वो ठीक हो गया। लेकिन अल्टीमेट आप नोट करेंगे कि ये जो 2 घंटे के बाद 15 मिनट की ब्रेक देते हैं, फिर 2 घंटे के बाद 15 मिनट की ब्रेक देते हैं, फिर आधे घंटे की ब्रेक देते हैं, इससे हम तरोताजा हो जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन इसी तरह जीवन के चरण में चलते हुए अगर आपका फटीग ठीक ना हो, लिमिटेड समय में ऐसा ना हो, लिमिटेड समय हम लोग किसको गिनते हैं, घर आ गए, काम तो किया हमने 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, लेकिन जब आप घर आकर सोते हो, खाना खाते हो, रेस्ट करते हो, 8 घंटे की नींद ले लेते हो, रेस्ट हो जाते हो, तो फिर आप फील करते हो कि फ्रेश हो गए, कोई बात नहीं, अब आज फिर काम करेंगे उसी तरह पहले की तरह करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि 8 घंटे नींद लेने के बाद भी आपको ये लगे कि नहीं थकावट तो है यार, शरीर काम नहीं कर रहा, मन नहीं करता उठने को, है काम करने को मन नहीं करता, और अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इसको सेंसिटिविटी आप समझें अपने शरीर की, और वो ओवर सेंसिटिव हो रही है इस बात के लिए, और उस ओवर सेंसिटिविटी में सिम्टम पैदा होने शुरू हो गए हैं, आपका एहसास बढ़ना शुरू हो गया है कि कुछ ऐसा है मेरे शरीर के साथ व्यवस्था जिसकी वजह से मेरी ये थकावट 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी ठीक नहीं हुई। उस वक्त आप समझ जाएं, उस वक्त आप अलर्ट हो जाएं कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए था, साधारण नींद लेना, साधारण रेस्ट करना उसी तरह ही था जैसे आप एक नोटों की गत्थी से कुछ नोट निकाल लें, आप रिलैक्स हो गए। लेकिन चलते चलते समय ऐसा आया कि जितनी रेस्ट आप पहले करते थे उतनी रेस्ट करने से भी शरीर फ्रेश नहीं हुआ। अगर फ्रेश नहीं हुआ इसका मतलब उसके नीचे होने वाली जो चीजें थी वो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, और वो क्या है, आपका एनाबॉलिक रेट, आपका एनाबॉलिक रेट कम हो रहा है, कैटाबॉलिक रेट आपका बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक रेट में अंतर आ रहा है, शरीर की रेजिस्टेंस में अंतर आ रहा है, और जैसे जैसे शरीर की रेजिस्टेंस में अंतर आ जाएगा, इसको हम दूसरी तरफ दूसरे लफ्जों में बोलते हैं सीनियरिटी, बुढ़ापा, बुढ़ापा आना शुरू हो गया। पर आप कहेंगे यार अभी तो कोई सारे मेरे को 2 साल या 4 साल हुए यही काम करते करते, अभी मैं बूढ़ा थोड़ा हो गया हूँ, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर आपको थकावट ज्यादा हो रही है, उम्र के हिसाब से यही काम आप पहले करते थे थकावट नहीं होती थी, अब होनी होगी, अब शुरू हो गई है, और उसके बाद ये बातें लिंगर ऑन होनी शुरू हो गई, और आपने देखा कि यार शाम के समय मेरा शरीर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बुखार होना शुरू हो गया, हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप उसके लिए कोई दवाई ले या कोई ऐसा कर्म करें, और लेकिन आप नोट करते हैं, अगर नोट करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा ये 98.4 नहीं होगा, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ गिनते हैं ना, 98.4 वो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, लेकिन हाँ इतना होगा कि आप उसको फिर भी टेम्परेचर नहीं बोल रहे हो, क्योंकि हर आदमी का एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ होता है, एक मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है, कुछ लोग का नॉर्मल टेम्परेचर 97 पे रहता है और उनको अगर 98.4 हो जाता है तो वो फीवरिश फील करते हैं। तो हर आदमी के अपने इंडिविजुअल स्टैंडर्ड के मुताबिक हेल्थ का जो क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल हेल्थ क्राइटेरिया के मुताबिक जब आप महसूस करना शुरू करें कि भाई मेरी थकावट ठीक नहीं हुई, जो काम मैं रूटीन करता था और इतनी रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाता था, अब उससे ठीक नहीं हुआ, तो उसी वक्त सुचेत हो जाएं कि वो जो टेम्परेरी था ना रेस्ट करके वो नोटों की गति से नोट निकालने वाली बात, अरे रिलैक्स हो गए और आपने उसको छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, अल्टीमेट आपको उसके लिए सुचेत होना होगा, क्योंकि अंदर शरीर के जो पैथोलॉजी का कर्म है, जो सेल की चेंजेस आनी शुरू हो गई है, उसमें गार्बेज ज्यादा इकट्ठा हो गया है, और अल्टीमेटली उतना समय में जितने में पहले सफाई हो जाती थी घर की, वो नहीं हो रही, अब समय ज्यादा लग रहा है, और हम थकावट 8 घंटे नींद लेने के बाद भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन आनी शुरू हो जाए
और ये भी लगे कि काम करने के बाद यार शरीर में थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे गर्म हो गया है, थोड़ा हरारत बढ़ गई है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, तो इसको आप नॉर्मल ना समझेगा। दूसरी बात, अगर इन दोनों को, क्योंकि टेम्परेरी तौर पे भी किसी का हीट ज्यादा हो सकती है, टेम्परेरी तौर पे भी किसी को किसी एक दिन काम ज्यादा कर लिया तो उसके लिए थकावट हो सकती है, फटीग हो सकती है, लेकिन अब वो ठीक हो नहीं रही। जब आप ये समझें कि वो अब ठीक नहीं हो रही उतने समय में जैसे पहले होती थी, तो आपको सुचेत होकर अपने शरीर का सर्वे करना होगा। सर्वे का मतलब डॉक्टर की मुआयना नहीं है, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूँ, डॉक्टरी मुआयने की बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर का मुआयना करें। और उस मुआयने में वही बात मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि बीमारियों के पैदा करने के कारण क्या है, एक्साइटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो एक्साइटिंग फैक्टर क्या है, वो एक्साइटिंग फैक्टर ये है जैसे दही खा लिया, जैसे अचार खा लिया, जैसे हवा में चले गए, अंदर गर्मी थी बाहर ठंड थी, ठंड में चले गए, या बाहर ठंड थी अंदर ठंड थी और बाहर गर्मी है, कोई भी चेंज हो गई टेम्परेचर में और उसमें आपके शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया, तो उस हालात में जितनी भी चेंजेस पैदा होंगी, एक बार होगी कोई बात नहीं इग्नोर कर देंगे आप, दो बार होगी कोई बात नहीं इग्नोर कर देंगे आप, लेकिन बार बार अगर ऐसा होता है तो फिर आपको अपना सर्वे करना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं बीमार हो जाता हूँ या मेरा जो नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है वो नहीं रहता है। और इसको मैंने ये कहा था कि स्टार्टिंग में आप केवल 72 घंटे का सर्वे कर लें, 72 घंटे के सर्वे में क्या तब्दील किया, नोट क्या करना है कि क्या आपने रूटीन से हटकर किया, चेंज तब्दीली जो भी आपके रहन सहन में खान पान में आई है उसको नोट करें, और ये आपका एक्साइटिंग फैक्टर होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हमने कहा था मेंटेनिंग कारण, मेंटेनिंग काजेस जो हैं, कारण जो है बीमारियां पैदा करने के, वो इस तरह के फैक्टर होते हैं कि आप किसी चीज को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी चार रोजाना खाते हो, घंटा खट्टा है वो रोजाना खाते हो, जो भी कुछ है वो इस तरह की चीजें जितनी भी है लगातार कर रहे हो, लगातार आप एक एसी में काम कर रहे हो, कोई बात नहीं है, तो 10 साल हो गए मुझे यहाँ जॉब करते और एसी लगी रहती है, और रोजाना भी आप अपने, हम अकेले रहते हैं, माँ बाप तो घर में है, शादी हुई नहीं है, हम होटल से रोटी खाती है रोजाना और मिर्च मसाला पूरा है उन्होंने फर्स्ट क्लास बनाया होता है, लगातार मुझे 10 साल हो गए खाते हुए, लेकिन क्या हुआ अब आपको उससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, लेकिन आप उसको ब्लेम ही नहीं कर रहे, ये तो यार 10 साल हो गए मुझे इसी होटल पे काम खाते हुए, 10 साल हो गए मुझे यही ऐसा कुछ करते हुए, इसी ऑफिस में काम करते हुए, और अभी पहले तो मुझे कभी हुआ नहीं, अब हुआ है तो आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जिन चीजों को आप ब्लेम नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो चीजें लंबे समय से आपके जीवन के साथ वाबस्ता हैं, आपके रूटीन लाइफ के साथ वो वाबस्ता हैं, और अगर वो वाबस्ता हैं तो उसको इल्जाम कैसे दीजिएगा, एक आदमी दोस्त बन के लगातार आपके साथ रहता है उसको दुश्मन होने का सर्टिफिकेट कब दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा ना, नहीं कर पाइएगा। लेकिन इसके लिए मैंने आप सबको कहा था कि जब भी बीमारियां इस तरह की हों कि वो बार बार आनी शुरू हो जाए, बार बार ऐसा होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त पहली बात आपने 72 घंटे का सर्वे करना है। और अब करने के बाद आपने कहा था वो डॉक्टर साहब आपने तो कहा था दही खाने से आपको बीमारी हुई है, अचार खाने से आपको बीमारी हुई है, मैंने तो छोड़ दिया, अब तो नहीं खाता यार, अब भी फिर मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन जो शनाख्त जो है और डीप करनी पड़ेगी। अब और डीप करने में क्या है, जितनी भी चीजें आपके हालात से व्यवस्था हैं वो तो इस तरह की हैं कि आप लंबे समय से वही करते आ रहे हो, तो इसके लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी, मान लिया जाए किसी कमरे से बदबू आ रही है और आपको पता ही नहीं चलता कि कारण क्या है, बदबू कहाँ से आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पूरा घर का सामान बाहर निकाल कर फेंकते हैं, घर की फिर सफाई अंदर की करते हैं, फिर एक एक चीज को अंदर लाने की कोशिश करते हैं, और जब आपको ये लगे ओ इसकी वजह से ऐसे बदबू आती थी,
आपको पता चल जाएगा कि किसको हमें बाहर निकालना है। आपके खाने पाने में, आपके रहन सहन के ढंग में, आपके नींद या इसके हालात में, जब अब कोई लगातार आप वो करते आ रहे थे, अब आपने छोड़ दिया, रूटीन आपने वो बदल दिया सारा कि नहीं अब मैंने ऐसे नहीं करना, मैं नाइट ड्यूटी करता था मैं नहीं करनी है, और अल्टीमेट हम रोजाना होटल पे खाते थे नहीं करना है। अब बेशक ऑफिस में एसी लगी हुई है लेकिन हम अपने केबिन में एसी नहीं लगने देंगे, खाली रहेंगी। मतलब क्या हुआ कि आपने वो सारा सामान जो रूटीन का था, आपके जीवन के साथ व्यवस्था था, संबंध था, उसको निकाल दिया। अब अगर आपने उस सब चीज को निकाल दिया है तो फिर उसके बाद आपने एक एक चीज को फिर पुराना उस जीवन जीने की कोशिश की, क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना ही है ना, और फिर आप देखेंगे कि नहीं यार, जिस दिन ये एसी के अंदर फिर मैंने बैठना शुरू किया ना, फिर मुझे ठंड लगनी शुरू होगी, फिर मुझे यार शरीर मेरा ठीक नहीं है, और उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी का कारण ये था, और उसको आप हटा देंगे। हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और इस बात की जो चीज लंबे समय तक, जिसको हमने कहा मेंटेनिंग काजेस, पहली बात थी एक्साइटिंग का, मैं ऐसे नहीं करना, मैं नाइट ड्यूटी करता था मैं नहीं करनी है, और अल्टीमेट हम रोजाना होटल पे खाते थे नहीं करना है। अब बेशक ऑफिस में एसी लगी हुई है लेकिन हम अपने केबिन में एसी नहीं लगने देंगे, खाली रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपने वो सारा सामान जो रूटीन का था, आपके जीवन के साथ व्यवस्था था, संबंध था, उसको निकाल दिया। अब अगर आपने उस सब चीज को निकाल दिया है तो फिर उसके बाद आपने एक एक चीज को फिर पुराना उस जीवन जीने की कोशिश की, क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना ही है ना, और फिर आप देखेंगे कि नहीं यार, जिस दिन ये एसी के अंदर फिर मैंने बैठना शुरू किया ना, फिर मुझे ठंड लगनी शुरू होगी, फिर मुझे यार शरीर मेरा ठीक नहीं है, और उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी का कारण ये था, और उसको आप हटा देंगे। हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और इस बात की जो चीज लंबे समय तक, जिसको हमने कहा मेंटेनिंग काजेस, पहली बात थी एक्साइटिंग कारण, दूसरी बात मैंने ये कही मेंटेनिंग कारण, कि ये चीज

फिर मुझे यार शरीर मेरा ठीक नहीं है, और उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी का कारण ये था, और उसको आप हटा देंगे। हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और इस बात की जो चीज लंबे समय तक, जिसको हमने कहा मेंटेनिंग कॉजेस, पहली बात थी एक्साइटिंग कारण, दूसरी बात मैंने ये कही मेंटेनिंग कारण, कि ये चीज मेरी बीमारी को मेंटेन कर रहे थे, रेजिस्टेंस को डेवलप नहीं होने दे रहे थे, और मेरे शरीर को और वीक कर रहे थे। मुझे पता ही नहीं था इस बात के लिए कि ये बात है। अब मुझे पता चला है कि इस बात की, इस वजह से मेरी, मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था, तो मैंने उसको पीछे हटा दिया। और फिर मैंने कहा कि मैं तंदुरुस्त ठीक रहता हूँ, अब तो जल्दी बीमार नहीं होता। जब से मैंने ये चीजें छोड़ी उसके बाद ठीक हुआ। अब क्योंकि वो चीजें रूटीन लाइफ का हिस्सा हैं, रूटीन लाइफ का हिस्सा हैं, तो यार कैसे छोड़ दें। यार दही खाना सभी लोग खाते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। ये अचार वगैरह तो टेस्ट के लिए लोग सारे इस्तेमाल करते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। यार सारे लोग तो ऑफिस में बैठते हैं, एसी में काम करते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने इस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं कि कुछ हालात को हम छोड़ नहीं पाते, तो फिर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक फिर दोबारा जो आप शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब इन चीजों के लिए फिर और आपको क्या समझना होगा, इस चीज को समझें कि अभी हमें कुछ और खोज करनी है कि कौन सी बीमारी, कौन सा कारण है जो मेरे शरीर के साथ व्यवस्था है और मैं बीमार हूँ। पहली बात तो मैंने आपको फटीक की कह दी थी, रूटीन से ज्यादा थकावट हो गए, और वो जो पहले 8 घंटे आराम करने के बाद ठीक हो जाती थी अब नहीं हो रही, बार बार रेस्ट ज्यादा करने को मन करता है और फिर भी थकावट ठीक नहीं हो रही, ये बात। दूसरा, हर हमेशा काम करने के बाद, रेस्ट के बाद आप काम करते हो बाद, फिर आपको लगे कि यार शरीर थोड़ा गर्म हो गया है, जैसे हरारत सी हो गई है, बुखार होना शुरू हो गया है, और फिर ठीक भी हो गया है थोड़े समय के लिए रहा, और तभी जो मांसपेशियां थी या जो सेलों के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, अब वो रेस्ट करने के बाद फिर पूरी हो गई और आप तरोताजा महसूस करते हो। लेकिन अगर वही चीज लगातार आपके साथ लगी रहे, ना ठीक हो, बढ़ती जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सेलों में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई है, अब वो पूरी फिल अप नहीं हो रही। और उसके बाद ये जो मेंटेनिंग कारणों की बात मैंने आप सब लोगों को बताई, उसमें अगर आप ये नोट करें कि यार मेरा तो वजन ही कम हो गया, आस पड़ोस के लोग भी ये कहना शुरू कर दें कि यार क्या हो गया, दुबला पतला हो गया, तुम बीमार रहते हो क्या है। नहीं नहीं बीमार तो नहीं रहता, लेकिन जब दूसरों की नजर में ये ऐसा आना शुरू हो जाए, जब आपको ये लगे कि मेरी पेंट जो है वो उसका पेंट का जो बक्कल बांधते हैं अब पहले से ज्यादा पतला हो गया है, उसका सराउंडिंग सर्कमफेरेंस जो है और कम हो गया है, मुझे और मोरी निकालने की जरूरत पड़ गई है, मेरा शरीर का जो वजन है वो पहले से कम होना शुरू हो गया है, तो फिर आप सुचेत हो जाएं कि कुछ इस तरह के मेंटेनिंग कारण आपके साथ जरूर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये फटीग थी, जिनकी वजह से ये बुखार था, जिनकी वजह से ही आपका वजन कम होना शुरू हो गया है। तो सीरियस कंडीशन है, आप थर्ड स्टेज के हालात में आपका जो एनाबॉलिक रेट है वो कम होना शुरू हो गया है, बॉडी को मेंटेन करने वाली जो शक्ति थी, आपकी जो सिक्योरिटी थी वो इतनी कम हो गई है कि आप ऐसा, आपका वजन भी कम होना शुरू हो गया है, आपका लॉस प्रॉफिट की जगह लॉस होना शुरू हो गया है। तो सुचेत हो जाए, और इसके बाद मान लिया जाए आपकी मजबूरी है काम करना, आपकी मजबूरी है उसे हालात में चलते जाना, आपकी मजबूरी है उसी तरह का खाना खाते रहना, नहीं बंद कर सकते उसी तरह के ऑफिस में, आपको कहना भाई आपके लिए कुछ स्पेशल कमरा थोड़ा बनाएंगे कि आप वहां काम करो, एसी में सभी काम करते हैं, तुमको भी तो करना होगा। तो अल्टीमेट जितने भी आपने प्रबंध किए उनके हिसाब से आपका वजन कम हुआ, आपको बुखार जैसा होना शुरू हुआ, आपकी थकावट ना थोड़े समय में, नॉर्मल समय में जो ठीक होती थी नहीं हुई, तो उसके साथ अगर आपने ये देखा कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुझे, यार सभी को काम करने में तो पसीना आता है, ये तो हम समझते हैं ना, एक्सरसाइज की है पसीना आ रहा है, ये तो नॉर्मल बात है ना, लेकिन आप जब रेस्ट में हो, आराम कर रहे हो, उसमें पसीना आ रहा है,

0: ये नॉर्मल नहीं है। रेस्ट के समय भी आपके शरीर को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और उसमें जैसे हाइपोथायराइड में मैंने आपको बताया था, सीना बहुत आता है, सीना आता है, पर उसमें कंडीशन मैंने एक कही थी, शरीर मोटा ताजा है, मोटा हो गया है, पसीना ज्यादा आ रहा है, हमेशा ही पसीना ज्यादा आ रहा है। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि पसीना रात को आता है, वजन कम हो गया है, वजन कम हो गया है, पसीना रात को आता है, बुखार रात को आता है, थकावट जो मेरी शरीर के, सुबह मुझे काम करना ही पड़ता है, परिवार को पालना है, काम तो करना ही पड़ेगा, और इस हालात में मेरा शरीर और वीक होता जा रहा है, तो उस लिहाज से आपको सर्वे करना होगा। अगर किसी पर्टिकुलर अंग की कोई इस तरह की निशानी आपको दिखाई नहीं देती, तो किसी खास अंग में आपको इस तरह के हालात निशानियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, जिसको हम बोल लेंगे सार्कोइडोसिस, इस तरह की सेफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्टिंग में शुरू होती। सेफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी इन्फ्लामेशन होते हैं ना, उनका एक रूटीन होता है। इन्फ्लामेशन में जो सबसे पहले रेडनेस, ज्यादा खून आ गया वहां पर, और उसके बाद जब ज्यादा खून आ जाएगा तो वहां काम करने का जो हालात है उस अंग कम हो जाएगा, डिसफंक्शनिंग होनी शुरू हो जाएगी, दर्द होनी शुरू हो जाएगी, और इस तरह की जो मोबिलिटी का रेडनेस आनी शुरू होगी, और ये सब चीजें जो आनी शुरू होगी इन्फ्लामेशन के साइन है नॉर्मल तौर पे। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं कि अगर ये इन्फ्लामेटरी होती तो फिर इस चीज को सेकंड स्टेज में जाना था ठीक होने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डीजनरेशन, मतलब ये जो फिंसियां, ये जो दाने, ये जो ग्रुप में निकलने वाली इस तरह की सार्कोइडोसिस की कंडीशन मैंने कही है, जो किसी भी अंग में हो सकती है, उसमें ये चीजें जो हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेटरी होती, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो परफेक्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं है, आती हैं ठीक हो जाती हैं, आती हैं ठीक हो जाती हैं, और ये अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती तो ये फिर एक के बाद दूसरी स्टेज में जाती, जो इन्फ्लामेशन की स्टेज है उसको हम बोलते हैं डीजनरेशन, और डीजनरेशन का मतलब होता है कि उसमें कोई पस फॉर्मेशन हुई, कुदरत ने उस पस को बाहर निकालने की कोशिश की, उन टिश्यू में डैमेज हो गई और उससे वो पस निकलनी शुरू हो गई, और उसके बाद फिर ऐसा होगा कि अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो अगली स्टेज आ जाएगी इस टिश्यू की कि निक्रोसिस होनी शुरू होगी, यार ये तो मेरा अंग काम ही नहीं करता है, ये तो मेरा इसमें पस रेशा निकल रहा था, उसके बाद अब नंबनेस सी होगी, सुन्न सा हो गया है, इस तरह आएगा तो कहेंगे निक्रोसिस हो गई है, और बहुत बड़े एरिया में ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो उसको हम गैंग्रीन कहना शुरू कर देंगे, तो ये पूरा टोटल हिस्सा ही काम नहीं कर रहा है। मतलब ये इन्फ्लामेशन की एक स्टेजों की चेन है, जो जिसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं, ये इन्फ्लामेशन की चेन जो है ये रूटीन में आती है। पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सार्कोइडोसिस की बात है वो किसी भी अंग में सकती है, लेकिन सेफ इन्फ्लामेटरी टाइप की कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन की वो कहानियां, वो हालात नहीं पैदा होते, ना इसमें रेडनेस आती है, ना इसमें पस फॉर्मेशन होती है, ना वो पस फॉर्मेशन का निकास होता है, भाव वो जो चीजें थी ना वो नहीं हो रही, दर्द होती है नहीं हो रही, लेकिन देखा क्या है यार, मेरे हाथ में यहाँ पर ना एक ग्रुप में फिंसियां सी निकल आई, ग्रुपिज्म में जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलेशन होनी शुरू होगी, क्लम्स, गुच्छे क्लम्स होने शुरू हो गए, करी मोटे पे हो गए, कभी पेट में हो गए, कभी टांग पे हो गए, इग्नोर कर दिए, अब दूसरे तीसरे दिन अपने आप ही ठीक हो गए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ये जो सार्कोइडोसिस है ये किसी भी अंग में हो सकता है, टांग वांग में हो गए कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर यही चीज आंख में हुई तो आज जैसे जिसको कुकरे बोलते हैं, हो गए कुकरे ठीक हो गए तो कुकरे ठीक हो गए, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि यार साधारण सी बात है, लोगों को हो ही जाते हैं, और इस तरह के इतने इतने बड़े दारू बड़े हैं और वो ठीक कर देते हैं उसको टेम्परेरी, हालांकि ना भी करे तो भी उनका रेजोल्यूशन अपने आप नेचर का, जैसे ग्रेनुलेशन की बात मैं कह रहा हूं, हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, बार बार होते हैं और आप इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह ही या नाक में कोई चीज हो सकती है। इसी तरह की जो जरूरी अंग है ना आपके, जैसे फेफड़े हैं उनमें हो गया, हार्ट है उनमें हो गया, और इसकी साधारण एक आम सी बात मैंने आपको कही थी, गले में, जहां पर आपकी जीभ नीचे खुराक वाली नाली के साथ मिल रही है, खुराक वाली नाली का नाम है फेरिंग्स, जीभ का नाम है ग्लॉसल, टंग, हाँ जी, टंग के दूसरे और भी नाम है, जहां पर वो जंक्शन होता है ना, इन दोनों को आपस के जीभ ने उल्टा पुल्टा के, दांतों ने उसको ब्रीक कर दिया, जीभ ने उसके उल्टा पुल्टा करते हुए फिर पीछे खुराक की नाली में इसको उढ़ेल दिया, और खुराक की नाली में ढेलने वाला जो जंक्शन है ना वहां पर, उसको हम बोलते हैं ग्लासोफ्रिंजियल जंक्शन। जीभ और खुराक की नाली का जोड़, जहां पर जोड़ लगता है, आपने बहुत से देखे होंगे साधारण पे, अगर दो लोहे की पत्तियों को जोड़ना हो तो उसमें कील अगर ठोकेंगे तो वो कील ऊपर से ऊपर हुए दिखाई देते हैं। जीभ के ऊपर जो ये जिसको टेस्ट बड बोलते हैं, अगर आप ध्यान से अपनी जीभ को देखेंगे तो सामने थोड़ी सी गर्म चीज खा लो, थोड़ी सी गर्म चाय चाय पी लो, जीभ के आगे जो टंग है ना ये लाल लाल हो जाएगी, और अगर उसको ध्यान से देखो और ज्यादा तो आपको लगेगा कि छोटे छोटे दाने से हो गए, पर ये तो पता है नहीं इन्फ्लेमेशन कंडीशन की वजह से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ कि टंग में ऐसा हो जाए, या ऐसा जाने कि जैसे जैसे जो ये टेस्ट बड है ना जीभ के ऊपर, शुरुआती 1/3 एरिया में ये बहुत वीक है, हमें पता नहीं चलता, उसके बाद वो ऐसे है जैसे एक तौलिया नहीं होता फर वाला, फर वाला जो तौलिया होता है उसके पीछे इस तरह के होते होते सॉफ्ट है, लेकिन सामने के टाइनी बिल्कुल स्मॉल टेस्ट बड की जगह से वो स्मॉल से छोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे बोर वाला तौलिया हमारा होता है, और उसके पीछे अगर जाओगे तो वो जो स्मॉल बोर वाला तौलिया है वो थोड़ा और सख्त हो गया, मोटा हो गया। आप अपने गले में उंगली डालकर देखो, जहां पर खुराक की नाली के साथ मिल रही है ना हमारी जीभ, उस जगह पर ये बहुत मोटे मोटे दाने हमें महसूस होते हैं, पर दर्द नहीं करते, ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन किसी हालात में बार बार होते हैं और उनको उनका साइज बढ़ना शुरू हो गया, पहले पेनलेस है तो इसको भी हम सार्कोडोसिस ही कहते हैं, सुचेत होने की जरूरत है। अगर इसी तरह ही यही हालात हमारे फेफड़ों में हो गया तो भी आप देखेंगे बार बार ड्राई कफ हो रही है, बार बार ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि वो दाने जा नहीं रहे हैं, ठीक होती है, कुछ दवाइयां ली डॉक्टर से वो ठीक होगी, आप जो है क्रेडिट दे रहे हैं उस दवाई को कि जब हमने कोरेक्स पी ली थी तो ठीक हो गया था, ग्लाइकोडीन ले ली थी तो ठीक हो गया था, या किसी भी दवाई का नाम ले तो ठीक हो गया था, बार बार फिर हो गया। तो रेपिटेशन में जो इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं तो इस हालात को हम सार्कोडोसिस बोलते हैं। उसके लिए सुचेत होने की बात तो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि जब चीज कोई बार बार आने शुरू हो जाए, उसके साथ फटीग, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट वगैरह आने शुरू हो जाए तो ये गलत चेन है, नॉर्मल नहीं है, इसके लिए आपको सुचेत होना है। और ये तो मैंने बोल ही दिया कि हड्डियों में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, फेफड़ों में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है, लेकिन हार्ट में बहुत कम होती है, क्योंकि हार्ट के जो मसल्स है ना वो बड़े स्पेशल, क्या बोलते हैं ना कि ये स्टेनलेस स्टील है भाई, स्टेनलेस स्टील क्या है, इसको दाग नहीं लगता जी, ये स्टेनलेस है, सब्जी वगैरह जो भी कुछ बनाओ इसके नीचे नहीं लगती, इसको सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो हार्ट है ना हमारा, वो इस तरह के परकिंजी फाइबर से बना, बड़े स्पेशल टाइप के फाइबर कुदरत ने उसमें लगाए हैं, जिनमें आमतौर से ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और होता है ऐसा नहीं कह सकते नहीं होता है, और जोड़ों में आमतौर पे हमें देखते हैं, जब जोड़ों में हो और बार बार हो और अल्टीमेट उसमें कुछ इस तरह का हो कि जोड़ों में दर्द भी होने शुरू हो जाए, तो उसको हम ल्यूपस बोलते हैं, उसका नाम बदल जाता है कि कोई चीज इस तरह आए कि बार बार फिंसियां दाने उभरने शुरू हो जाए किसी जोड़ के ऊपर, और उसके बाद जोड़ दर्द करना, पहले तो होते थे दाने, खारिश माड़ी मोटी उंगली मार देते तो ठीक हो जाता था, फिर होते थे फिर ठीक हो जाता था, नहीं यार अब तो ये दाने होते हैं तो उनके साथ मेरे जोड़ में भी दर्द होता है, मेरा जोड़ स्लिप हो रहा है, चलने फिरने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो ये क्या है? सार्कोइडोसिस। उस हालात में आप नोट अगर करेंगे, जब स्थिति यहां तक पहुंचती है तो फिर फटीग, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये चीजें शामिल हो चुकी होती है। और ये सब बार बार कहने का मेरा मतलब ये है कि ये फुट स्टेप है आगे बढ़ने के, कि ये बीमारी आपकी आगे बढ़ रही है, तो बीमारी आगे तो ये तो मैंने कहा है कि भाई ये तो पेनलेस है, आती भी है चली भी जाती है, 50-60% ये अपने आप ही ठीक होती, कुछ करना है कि नहीं। लेकिन अब ये स्थिति ये हो गई है कि बार बार इस आती हुई बीमारी ने हमारा मेटाबॉलिक रेट का जो तवाजन था वो खत्म कर दिया, हमारा एनाबॉलिक रेट जो था शरीर को बिल्डअप करने का, शरीर को तंदुरुस्त रखने का, वो कम हो गया, हमारी रेजिस्टेंस कम हो गई है और हमारा कैटाबॉलिक रेट बढ़ गया है। हम कमाकर तो लाते थे 5, खर्च करते थे 2 और हम बच्चे थे जवान हो गए, 3 बचते थे बैंक में जमा होते थे। अल्टीमेट स्टेज ये आ गई कि हमने कमाए 5, खर्च किए 3, थोड़ा अब कम जमा हुआ बैंक में, और इसी तरह हमारा जो कैटाबॉलिक रेट था, खर्चा जो था बढ़ना शुरू हो गया शरीर का। खर्चा शरीर का मतलब है उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है उससे जितना भी हमारा वेस्टेज होता है, कैलोरीज वेस्ट होती है, वो सब बढ़ रहा है। और वो सब बढ़ रहा है तो आपको सुचेत, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुचेत उस वक्त हो जाने की जरूरत है कि आप अपना पूरा सर्वे करें इस शरीर के लिए कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज गलत आ गई है, गलत हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बेशक आज तो किसी ने हमारी खिड़की खड़का दी है ना, आवाज लगाई चला गया, हमें खराब कर रहा है। हम फिर बार बार देखते हैं यार खिड़की में कौन था, कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे दिन किसी ने फिर खराब कर दी, हमारा दरवाजा खड़का दिया, हम फिर उठकर जाते हैं यार कौन था यहाँ पर, कोई भी नहीं था। लेकिन आप सुचेत हो जाए, किसी दिन वो आपके घर की चोरी भी करेगा। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये जो सार्कोइडोसिस आपको लगता है, ये आपके इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी हुई बात है, और इम्यून सिस्टम का डीरेगुलेशन हो रहा है, प्रोटीन में नहीं चल रहा है, और इसमें चलते चलते चलते चलते जब पता लगा यार अब मैं तो रोजाना इसका कुंडा खड़का रहा हूँ, ये आपके आगे देखता ही नहीं है, मैं चला जाता हूँ फिर एक दरवाजा खड़काता हूँ, आके देखता ही नहीं है, तो पता लगेगा कि नहीं अंदर वाला बंदा तो सुस्त है, आपने केयर नहीं की, आपने उस वक्त अपने शरीर को नहीं संभाला, डॉक्टर से नहीं कंसल्ट किया, अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपने नहीं देखा कि आपकी रेजिस्टेंस क्यों वीक हो रही है, आपके चलन में, शरीर में, खाने में, पीने में, रहने में, सोने में क्या अंतर आ गया, उसकी आपकी परवाह नहीं की। और अल्टीमेट वो बंदा आएगा, वो बोलेगा कि खिड़की के खड़काते खड़काते आप दरवाजे को खड़काया, अब कोई आया नहीं तो अब इसका मतलब घर में कोई नहीं, चोरी कर लो, ऐसे होता है ना रूटीन में। और वही रूटीन की जो बात, अगर शरीर को वो बार बार कोई चीज आए कहे आगे चली जाए, आए करे खड़काए और आगे चली जाए, बेचारे यार वो अपने आप चला गया, मैं बाहर देखता हूँ वहां तो कोई नहीं है, थोड़े दिनों बाद में ठीक हो गई है। लेकिन मैं आपको सार्कोइडोसिस के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की बीमारी है जो शरारत तो है, लेकिन शरारत इतनी नहीं है कि अभी आपका कोई नुकसान करे, सिर्फ आपकी रेजिस्टेंस को देख रही है कि आप सुचेत कितना है, आप अपने घर की खिड़की के दरवाजे के सुचेत कितना है। और जब उसको ये यकीन हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही सुचेत नहीं है, बार बार मैं इसकी खिड़की खड़काता हूँ, बार बार इसका दरवाजा खड़काता हूँ, बार बार वो फिंसियां कभी कहीं हो जाती, कभी कहीं हो जाती, कभी गले में हो जाती, कभी आंख में हो जाती है, कभी जोड़ों में हो जाती, ये तो परवाह नहीं करता, फिर क्या होगा, वो आ जाएगा कि यहाँ कोई नहीं है, वो चोरी करेगा, फिर आपके शरीर का ज्यादा नुकसान होगा। और इम्यून सिस्टम आपका जो है डीरेगुलेशन होने की वजह से, और अगर आपने अपनी खिड़की के साथ पहले करंट लगा रखा है, आप तो एक्सरसाइज करते हो, आप तो हेल्दी फूड खाते हो, आप शरीर दर्द करते हो, तो जो आपकी खिड़की के नजदीक आएगा करंट लग जाएगा, नजदीक ही नहीं आएगा, बीमारी आएगी नहीं आपको। सो इसलिए मैं आप सब लोगों को सुचेत करना चाहता हूँ कि भाई ये जो सार्कोइडोसिस होता है ना, ये एक तरह दोस्त बीमारी है, दोस्त बन के साथ साथ चलती रहती है, जब उसको पता चलता है कि अब मेरा दोस्त तो अवेसला हो गया, और उसके बाद वो आपका नुकसान भी कर सकता है और होता ही है। तो इस तरह की बीमारी, मैं फिर आपको दोहरा दूं कि शरीर के किसी भी अंग में छोटे छोटे दाने, जिसको हम ग्रेनुलेशन बोलते हैं, किसी भी अंग में ग्रुप के तौर पर एक थोड़े से एरिए में लाल लाल हो गया, उसमें दाने उभरे, दर्द कोई नहीं हो रहा, तकलीफ कोई नहीं है, एक आध दिन रही वो फिर ठीक हो गई। कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी किसी जगह में। हाँ, अंदर के अंगों में जब होता है, जैसे आंखों की कुकरों की बात मैंने बता दी, गले में अगर होता है तो उसमें खारिश होनी शुरू हो जाएगी, नाक में अगर होता है तो फिर नाक में इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें अंदर के अंगों की जो है ना, वो सिम्टम के तौर पर पहले ही आनी शुरू हो जाती है। बाहर तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में घुसकर आकर कोई खराबी करनी शुरू करे तो बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए अगर सार्कोइडोसिस बाहर बाहर स्किन के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इग्नोर कर देते हैं उसको, यार तकलीफ तो कोई नहीं इसकी, या छोटा छोटा मोटा तेल वगैरह लगाया, ये कोई छोटी मोटी क्रीम लगा ली तो ठीक हो गया। लेकिन अल्टीमेट भी ये इस तरह की बात है कि बार बार होने के बाद आपकी रेजिस्टेंस वीक हो रही है। नापें कैसे, जाने कैसे इस बात को? और उसके लिए मैंने आपको चार पांच बातें बता दी। एक तो फटीग बता दी, फटीग सभी को होती, थकावट होने के बाद, काम करने के बाद अगर ज्यादा आपने काम कर लिया अपनी शक्ति से, थकावट तो हो जाएगी ना, पर वो थकावट दूसरे दिन ठीक भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि थकावट हो तो रही है, तो बार बार ठीक ही नहीं हो रही, जितनी नींद हम पहले लेते थे उतनी नींद लेने के बाद भी ये ठीक नहीं होती, तो सुचेत हो जाएं कि ये जो दोस्त बन के आ रहा है, कभी टांग में फिंसियां, कभी बांह में फिंसियां, कभी आपके हाथ में फिंसियां निकली आई, आपने देखा कि यार कुछ पता नहीं छोटे छोटे दाने से हो गए ग्रुप में, और फिर ठीक हो गए, तेल वेल लगाया ठीक हो गए, तो अपने आप ही चले जाएंगे, या तेल वेल ना भी लगाओ तभी चले जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज रूटीन में आती रही और आपने टेक केयर नहीं की, तो फिर आपकी थकावट भी बढ़ेगी, फिर आपके शरीर में हरारत भी बढ़ेगी, फिर आपका अल्टीमेटली वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा, फिर आपका फुट जो है, नाइट स्वेट जो है, ये भी होना शुरू हो जाएगा। और इन चार चीजों तक पहुंचते पहुंचते अगर आपने इसको फिर भी ना कंट्रोल किया, फिर भी छोड़ दिया, तो अल्टीमेट क्या है, आपके लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो लिम्फ नोड जब भी किसी चीज के इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो वेनस सर्कुलेशन है, जो हरेक सेल से उसका गार्बेज इकट्ठा करके वापस लेकर आ रहा है, ताकि अलग अलग अंगों में इस गार्बेज को बाहर निकाला जाए। पहले तो खुराक जाती है तो टट्टी के रास्ते निकल गई, अगर ये सर्कुलेट करते करते सारा खून में मिला हुआ गार्बेज किडनी के पास पहुंचा, तो उसने यूरिया वगैरह और सारा कुछ बाहर निकाल दिया पेशाब के रास्ते, फिर ये लिवर में भी जाएगा, तो उसमें भी जाकर ये अपना बाइल के रूप में इसको बाहर निकाल, बाइल बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है, लिवर का वेस्ट प्रोडक्ट है। पर मैंने आपको कहा ना कि कई तरह के सिक्रीशंस हैं, कई तरह के एक्सक्रीशंस हैं। एक्सक्रीशन जो है वो तो बॉडी से बाहर निकल गया, पसीना बाहर निकल गया, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, टट्टी बाहर निकल गई इस्तेमाल नहीं करते, पेशाब निकल गया इस्तेमाल नहीं करते, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और कुछ सिक्रीशन होते हैं वो एक अंग का गार्बेज है, लेकिन वो दूसरे अंग के लिए जरूरी चीज है, खुराक है उसकी। बारी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी बी की, हनी बी की, दही जो शहद होता है वो तो हनी बी का वेस्ट है ना, लेकिन हमारे लिए वो शायद है। इसी तरह कोई भी चीज दुनिया में वेस्ट नहीं है, जो चीज हमारी वेस्ट हो किसी और के काम आती। तो मैं तो सेल की बात कर रहा हूँ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में इस्तेमाल सारा काम होता है उसी तरह शरीर में होता है। और इस शरीर में वो जो गार्बेज लेकर जाने वाली नालियां हैं, जिनको हम वेन्स बोलते हैं, उनसे गार्बेज अगर बढ़ जाता है तो फिर उसको संभालने के लिए कि ना भाई ये सारे शरीर में फैल ना जाए, ये बात और किसी को ना पता चले, यहाँ यहाँ रुक जाए तो ठीक है, तो उसके लिए कुदरत ने अलग अलग जगह पर लिम्फ नोड्स बना दिए हैं। और लिम्फ जितने भी लिम्फेटिक सेल्स है ना, उनका काम है खून को साफ करना, बदमाशों को ठीक करना। जेल में लिखा होता है ना सुधार घर, बेशक सुधार हो या ना हो, लेकिन लिखा यही है कि सुधार घर। इसी तरह ही जो ये लिम्फ नोड है ना, ये हमारे सुधार घर है, हमारी कैद कैद खाने हैं। वो जितना भी गार्बेज किसी सेल से आ रहा है, अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो लिम्फ नोड में इकट्ठा होता है। और जैसे पांव में चोट लगी तो इंग्वाइनल एरिया में लिम्फ नोड बन गई, अगर हाथ में कोई चोट लगी तो हमारी कांच में एक्जिला में वो नोड बन गई। तो ये लिम्फ नोड है गार्बेज इकट्ठा कर रही है ताकि ये गार्बेज आगे ना जाए, दूसरों को खराब ना करे। ये तो बदमाश है ही, ये दूसरों को जाए। वो बाबे नानक की जो साखी थी ना, बस ले रहो उजड़ जाओ, वो आपने सामने सुनी होगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अब, वो सब आप जानते हैं। उसी तरीके से ये जो गार्बेज आ रहा है उसको अगर लोकल एरिया में जेल में कंट्रोल किया जाए तो लिम्फ नोड में इकट्ठा होगा, अगर उससे बढ़ जाएगा तो फिर दूसरी लिम्फ नोड में भी जाएगा, फिर सारे शरीर में भी फैलेगा। और अब आखिरी बात इस सार्कोइडोसिस की मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि भाई फटीग, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये सब वो चीजें हैं जो वो गार्बेज निकालने का एक अलग अलग तरीका कार है। पीठ भरेगी, पसीना आएगा, निकल जाएगा, थकावट हुई है, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी रेस्ट करेंगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, सेलों से गार्बेज निकल जाएगा। इसी तरह ही ये सब चीजें होती आ रही हैं, लेकिन जब ये ना कंट्रोल हो तो उसके बाद शरीर में अलग अलग तरह से लिम्फ नोड, जहां पर भी कोई बीमारी है उसके एरिए में जितने भी लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाएंगे। अब जब भी लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं ना, एकदम हमारे सामने आ जाता हो कैंसर तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है जी। सो इतनी कहानी है इसकी कि दोस्त बन के साथ साथ चलने वाला राही था, कोई बात ही नहीं थी यार इससे कोई शक हो कोई नुकसान मेरा कर दे, लेकिन नुकसान हो सकता है अगर आपने इसको सुचेत होकर नहीं देखा तो। बात साधारण है, छोटी छोटी फिंसियां हुई, याद रखना छोटी छोटी फिंसियां हुई एक ग्रुप में हुई और फिर ठीक होगी, फिर छोटी छोटी फिंसियां कभी किसी और जगह हो गई फिर वो अपने आप ठीक होगी, दवाई लेने की नौबत ही नहीं आई ठीक होगी, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई खारिश नहीं उसमें हो रही तो दवाई किस चीज की ले, वो अपने आप ठीक होगी। लेकिन ये आपके लिए इंडिकेशन है, जैसे वो खिड़की की आपको एग्जाम्पल दी कि कोई आता है बाहर से आपकी खिड़की को नाव करके दौड़ जाता है, आता है फिर आपकी खिड़की को नॉट करके चला जाता है, फिर डोर को नॉक करके जाता है, तो उसको पता चलता है कि यार अंदर तो है नहीं कोई, कोई निगरानी करने वाला नहीं, कभी किसी ने शिकायत ही नहीं की, तो चलो बस चोरी कर लो। तो ये इस तरह की बीमारी है, साधारण बीमारी होते हुए भी ये सीरियस हो सकती है। और साधारण बीमारी के संबंध में अगर आपने अपना जीवन का सर्वे कर लिया, एक्साइटिंग फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर या फंडामेंटल फैक्टरों की जांच कर रही, तो ये आप उसको रोक पाएंगे ना भाई, मेरी खिड़की में तुमको नहीं आना, अगर नहीं आओगे तो मैं करंट छोड़ दूंगा। हाँ जी, तो ये करंट छोड़ रहे हैं आप जब आप अपना सर्वे कर रहे हैं और उसको भी पता लग गया कि ये तो सुचेत है बंदा, ये तो मेरे सेल में मारेगा, अगर ऐसा होगा तो फिर नहीं होगी बात। सो अगर ये इसको आप सिंपल इसको भी दे रहे, क्योंकि कोई बीमारी जितनी भी दर्द तकलीफ वाली होती है ना उसका उपचार हम बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जिसकी बहुत ही ज्यादा तकलीफ नहीं ना होती उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज का मेरा चैप्टर यही था आपके लिए, लेसन यही है कि नहीं, शरीर के साथ व्यवस्था इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं जो आपको तकलीफ तो नहीं दे रही लेकिन आपके नॉर्मल शरीर की बनतर का हिस्सा भी नहीं है। फिंसियां होनी कोई बनतर का हिस्सा तो नहीं है ना, चमड़ी के ऊपर बाल उगने तो हिस्सा है ना, कई जगह बाल उगने हिस्सा है और वहां पर बाल होते हैं, कई जगह बाल उगने हिस्सा होते हैं बाल उगते ही नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है, और कई जगह बाल नहीं उगने चाहिए वहां पर बाल उगाते हैं ये भी तो प्रॉब्लम है। इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, कहीं ना कहीं वीक है। चाहे हम दाढ़ी नहीं आई तो बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, चाहे किसी लड़की के चेहरे में बाल आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो प्रोजेस्टेरोन की कमी है, कुछ भी कहें लेकिन अंदर कुछ है ये जो आपके शरीर का नॉर्मल चलन नहीं चलने दे रहा। और अगर आप उसको उस वक्त सुचेत होकर कर लें, क्योंकि तकलीफ तो नहीं है ना, गाड़ी नहीं आई है तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना, और लेकिन एक नॉर्मल चलन के मुताबिक सही तो नहीं है ना, और लड़की के चेहरे में बाल नहीं होने चाहिए तो हो गए है ना यार, तकलीफ तो नहीं है ना उसकी। जब माताएं जब बूढ़ी हो जाती है ना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन टोटली बंद हो जाता है, बढ़ना सब कुछ हो जाता है, तो उनकी भी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, उनकी भी मूंछ आनी शुरू हो जाती है जी। तकलीफ तो नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के अंदर तो कुछ तब्दीली आई है ना, और जो तब्दीली आई है जिसको हम नॉर्मल नहीं समझते मेल और फीमेल से शरीर में, तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम किसी जगह तो वीक हुआ ही है ना भाई। सो इस तरह की जितनी भी निशानियां जो नॉर्मल शरीर का हिस्सा नहीं है, नॉर्मल शरीर के चलन का हिस्सा नहीं है, और बेशक वो तकलीफ दे हो या ना हो आ रही हैं, तो उसको आपको सुचेत होना चाहिए। बेशक वो चली गई है, आपको तकलीफ उसने कुछ नहीं दी, फिर आएगी तो फिर दोबारा तकलीफ देगी, इसलिए ये जरूरी है कि उसी वक्त ही आप अपने आप को समझो और देखो कि कौन से फैक्टर शरीर के हैं जिनकी वजह से मेरी इम्यूनिटी वीक हुई, जिनकी वजह से मेरी खिड़की की कोई नॉब कर रहा है बार बार, और उसको पहले से सुचेत कर दो कि मैं जागता हूँ, मैं जानता हूँ भाई, है ऐसा नहीं हो सकता। सो आज का समय मेरा समाप्त हो गया। मैं समझता हूँ कल से भी ज्यादा आज हिंदी में मैं आप सब लोगों को समझा पाया हूँ कि भाई सार्कोइडोसिस क्या होता है और कहाँ कहाँ भी हो सकता है, बहुत सी जगह में हो सकता है, सभी अंगों में हो सकता है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन था ना हिंदी में आम लैंग्वेज में, वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था, आपके आपके मन में सेट हो जाए। तो मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सेरा एंड कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। और किसी भी वक्त किसी की बीमारी के बारे में समझना चाहते हैं, या किसी बीमारी का होम्योपैथिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, या थक गए हैं इलाज करवाते कराते कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, जानना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं 4086871899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। आखिरी बेनती जो हमेशा करते हैं कि अगर आपको लगे कि इन लेक्चर से आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपकी जानकारी बढ़ रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप सुचेत हो रहे हैं हेल्थ प्रति, तो दूसरों भी को भी कहो, उनका भी फायदा हो जाए ना, तो मेरा कोई नुकसान हो रहा है ये मैं बांट रहा हूँ, ना आपका कोई नुकसान होगा अगर ये आप बांटेंगे किसी दूसरों को, फायदा होगा, आशीष जरूर मिलेगी, आशीष आपके हिस्से भी आ जाए। तो जरूरी है कि आप ऐसा करें, लोगों को बताएं, ताकि और लोग भी इसको होम्योपैथी, ये जो मेरा फेसबुक चैनल है तो उसमें जुड़ जाएं, यूट्यूब चैनल है उसमें जुड़ जाएं, या प्रवास रेडियो स्टेशन है उससे जुड़ जाएं, या कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना से हैं या साउथ कैरोलिना से जो जगत एक सज्जन रेडियो चलाते हैं उनसे जुड़ जाएं, किसी भी जगह सबरंग रेडियो स्टेशन से जुड़ जाएं, आपको ये लेक्चर सब मिल जाएंगे और आपका फायदा हो जाएगा, आपकी जानकारी में फायदा होगा। तो सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब थोड़े 10 मिनट पूरे हो गए जी, 2 नहीं बजे 10 में आ गए थोड़े,
0: तो 2 काट दो एक रह गया।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी। एक खाक साहब ने तो मेरे ख्याल छुट्टी ले लेनी है फिर 5 दिन की है ना।
1: हाँ जी, छुट्टियां लेंदे रहेंदे हूं, भन कड़ियां कर दे इन्हां दा, मेरे ख्याल चित नहीं लगदा स्कूले
0: स्कूले ने एडजस्ट करना चाहिए, जो जो दे सकते हैं वही दान करना चाहिए जिन्नी समर्थता हैगी है, कोई गल
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर जुड़ना चाहे तुम, अगर जुड़ना चाहो तो मेरे नाल जुड़ जाया करो,
1: क्योंकि कोई गल नहीं,
0: जद ए ना बंदा नचण वाला जाया है गया, वो नचे ना तो फिर ओदी अड्डी नहीं रहंदी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तुम अगर जुड़ना चाहो तो मेरे नाल जुड़ जाया करो, और अभी बतवा देवी एक घंटा पहले शुरू कर लिया करेंगे,
1: कोई गल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
2: मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू चीमा साहब
1: जी, थैंक यू थोड़ा दोनों का, हैप्पी फादर्स डे दोनों
2: जी, थैंक यू,
0: हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन
2: जी, थैंक यू जी।

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नक्सलवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उहने अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा वी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुज्जी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ए बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने, ओह बंदे नूं कई तरह मारदियां ने। एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते वी जबर कीता जांदा है ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तों बिल्कुल ना थिड़के। ओह अपनी सब तों प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी वी परवाह ना कीती ते ना ही मौत तों डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तों ना मेरी मौत ते ना रोयो मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसानां किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओह उच्च कोटि दा कवि, लोक युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओह वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तो उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह होणा ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे दा पता ही नहीं सी, हांजी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसी उन्हां दे घर किद्दां भेज दित्ती भाई, जे ओह लावारस है, पता ही नहीं ओह कौन है कौन नहीं। जदों तुसी टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उहदा अड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओह लावारस किद्दां होया? ते घर वाले उहनां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके। हांजी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਬ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਲਓ ਜੀ।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खट्टर नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम

0: वारिवा वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा ओ ये के लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दिया सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता है, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होने वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा, ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ
1: ਆਦਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
2: ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂ।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल

किन्नी प्यारी आवाज है दोस्तों, और किन्नी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उहने अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा वी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुज्जी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोला नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वो बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा पहाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना थिड़के। वो अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तो ना, मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया। उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा, उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने। संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलो ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसानां किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटी दा कवि, लोक युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जा नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों एक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। ये तिने एक दूजे के आपस में वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह उन्होंने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अहे उहदे अगे पिछे दा पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है, ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओह कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा अड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओह लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हांजी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हों लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: पड़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्या क्या

हुनर में मेले में अकेले फिरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना जमला पगला दीवाना।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जस यमला पगला दीवाना हो रब।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

वार यू आर, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरनम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानूं अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उस घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नू ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी ज्यूंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप

0: जदलतपुर वाले तारीख क्यों ना कैम उठाई।
1: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना तुहाडे नाल पेश करदा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं दीआं कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां,

खरिया सुनाने वाला पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार मिठे बोलन वाले आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी प्रवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, प्रवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवाज रेडियो, बिल्कुल दोस्तों, प्रवाज रेडियो इज योर ओन रेडियो स्टेशन।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301
1: ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ।

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुटत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल आवांगा, आप जी कल लाऊंगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां।

वाजिवा, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल लावांगा, आप जीआं दीआं कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम।

आके अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: घोड़ा चतुर
1: एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह ठक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे आई है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीते दे नाल चालू करांगे जी

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तो उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल लावांगा, आप दियां दियां कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबा लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सज्जनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुणाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सज्जनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, ओए लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणिया क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾ ਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।